chan Prabhu Dhanyabad. जिंदगी मन को तीन काम को बंदगी एक दुई तीन चार पाँच।